0: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछु छोरी?
1: आमा, मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
0: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
1: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सक्यो नि।
0: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
1: न्यू असम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू असम जाल्पा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98688147979, 98246025। अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98247628225।
3: गरेको भए होइन, गरिहाल्नुहोस्। यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
4: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनेन्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
3: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
4: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
3: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
4: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
5: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त सुवाल से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लगा आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइती। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली, फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59।
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: से तो प्लास्टिक को बोतल में घाम में राखने औषधी राखी पानी निर्मलीकरण करने विधि होनी काका त्यति मात्र होइन पानी राखने भाड़ो सफा हुनु पर्छ खाने पानी सधैं छोपेर राख्नु पर्छ नि।
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
2: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
3: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
4: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
3: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
4: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
5: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
6: जनप्रकाश आधारभूत विद्यालयमा भर्ना खुल्यो।
7: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित जनप्रकाश आधारभूत विद्यालय टीकापुर 4 बगमारामा शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि नर्सरीदेखि कक्षा 8 विद्यार्थी भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
6: जनप्रकाश आधारभूत विद्यालयका विशेषताहरू:
7: नर्सरी केजी र 1 सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराइने,
6: अनुभवी शिक्षकद्वारा पठन पाठन गराइने,
7: नयाँ प्रविधि र सरल तरिकाले स्मार्ट बोर्डमा अध्ययन गराइने,
6: सुरक्षित भवन, पर्खाल, खाने पानी र पुस्तकालयको व्यवस्था भएको,
7: विद्यार्थीहरूको हेरचाहको राम्रो व्यवस्था भएको, कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था भएको, तातो र चिसो खाने पानीको सुविधा र सफा शौचालयको व्यवस्था समेत भएको
6: र टाई बेल्ट र आईडीको पनि व्यवस्था भएको।
7: जनप्रकाश आधारभूत विद्यालय टीकापुर 4 बागमारा,
6: प्रधान अध्यापक रघुनाथ उपाध्याय, सम्पर्क नम्बर 9854833733।
8: विद्युत महसुल भुक्तानी सम्बन्धी सूचना: 2083 असार 1 गतेबाट टीकापुर वितरण केन्द्र र लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित विद्युत महसुल काउन्टर बन्द गरिने लक्ष्य राखिएकोले विद्युत महसुल अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गर्न हुन सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। विद्युत महसुल अनलाइन भुक्तानी गर्ने समय बिहान 8 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुरकै लाली।
9: कामिल कमल आइन बुखाइल बाटो त
10: हेरिने काका आई फुला टुरे बारीमा गेल रही सपो काट देली बीस निकाल देवी कि कैके लैके आयल बाटो
9: सपो कटलक विषक उपचार कर त सर्वदम सब उपचार केन्द्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ बिखार सपो कटलक हो कि नहीं हो के पट्टा लगा ख सर्पदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी भेनम से उपचार कर
10: सर्पदम से उपचार केन्द्र के विषय में मैं फिर सुनल तर
9: सर कुछ ही कही आना तुरंत उपचार केन्द्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी भेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था हस्तक चिंता नहीं पड़त
10: खाई ना तब ना ट्रेन कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बात
9: एम्बुलेंस आपूंगा समय लागत के था मर्सवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केन्द्र में ले जा दिए
10: रे बाबू संदेश
9: झट बाहर आता
11: सर्पदंश प्रभावित जिल्ला में बेरमहेन का समय में जो उपचार के ख जान जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केन्द्र संचालन में बा यी उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुईथा सापन का कटाई ले मनैन का मृत्यु न होकर ख सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटीभेनम निःशुल्क उपलब्ध करेलबा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्रक सम्पर्क नम्बर

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब ही जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477417।

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटा का आज था का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित सन्त निरंकारी आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
4: गुणस्तरीय शिक्षा अनुशासन र नैतिक मूल्यका साथ उज्जवल भविष्य निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता।
5: हाम्रा विशेषताहरू
4: दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा पठन पाठन गराइने
5: शान्त र अनुशासित शैक्षिक वातावरण भएको आधुनिक शिक्षण विधिको व्यवस्था भएको
4: अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड दिने
5: विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण प्रणालीको सुविधा भएको कक्षा सञ्चालन हुने मिति 2083 वैशाख 15 गतेदेखि
4: आफ्नो बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि आजै भर्ना गर्नुहोस्। गुणस्तरीय शिक्षा नै सफलताको आधार
5: सन्त निरंकारी आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली प्रधानाध्यापक भरत कुमार तिरुवा सम्पर्क फोन नम्बर 091560059 र 98485 1700

0: 67।
1: के तपाईलाई थाहा छ,
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र?
2: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद कर भी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाढ़, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

सामुदायिक रेडियो टीका एफएमकै बिहानी 9 बजेकै खोज खबरमा अपनेहुकन स्वागत बा खोज खबर सेमै सीता चौधरीकै राम राम अपने उक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेघाट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हम पात्र और नेपाली पात्र में फिर सुनती खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से फोटो कपी हो पीना पानी में ठगती उपभोक्ता बढ़ी मूल्य लेना है कार्रवाई करना नगर पालिका की कहाई पश्चिमी प्रणाली के प्रभाव देवरसिंह क्षेत्र में वर्षा की संभावना प्रतिनिधि सभा बैठक बैठी नीति तथा कार्यक्रम छलफल ओ जापान में नया भिसा नियम नेपाली व्यवसायी समेत संकट में टीकापुर के सरकारी कार्यालय इलाका प्रशासन कार्यालय मालपोत नापी लगायत कार्यालय में आजर पाजर व्यापारी उपभोक्ता मसे महंगो शुल्क असूली रहलक पाइलबा बुधवार नगरपालिका के अनुगमन टोली वहां पुगलक सरकारी कार्यालय आजर पाजर पसल में फोटोकपी कलक प्रति फोटो के रू 10 लेना कलक भिटगिल्वा अस्तकर के पीना पानी प्रति बोतल 20 रूपया लेह पड़ना हुए से फे 25 से 30 रूपया सम लेना कलक भेटगिल्वा टीकापुर के भिसराज नायक फे फोटोकपी कलक महंगो शुल्क तिरपलक बोटिल लेखापढ़ी व्यवसायी धनबहादुर बुढ़ाफी महंगो शुल्क तिर्के फोटोकपी करती रह बोटिलोट सेवग्राही धनबहादुर बोहरा पानी 30 रूपया बोतल किनके खैलबाट वहां के मूल्य कम हुए से फे ठगती रह बोटिलोट अस्त हर दिन अन्य नागरिक

0: कापुरका विशेषताहरू,
1: फराकिला कक्षाहरू,
0: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको,
1: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको,
0: खेलकुद सुविधा,
1: कम्प्युटर शिक्षा,
0: स्वच्छ पिउने पानी,
1: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ।
0: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली, सम्पर्क नम्बर 98584 24167।
1: तपाईँको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री।
2: विश्राम पाछा फ्रेसे स्वागतमा। महिला तथा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न गुवा महिला तालिम जिल्लाबाट टिकापुर नगरपालिका एक वडाकी आर्थिक सहयोग तथा दिगो विकास महिला सञ्जाल टिकापुरकी आयोजनामा तालिम हिल हो। चार दिनसम्म चल्लक तालिममा महिला अधिकार, महिला हिंसाकी अवस्था, महिला अधिकारकी रक्षा हो, हिंसामा पर्लक महिलाकी सुरक्षा केला कानूनी व्यवस्था, स्थानीय सरकारमा महिला पैना सेवा हो, सामाजिक सञ्जालके थप के चुनौती, परिवार व्यवस्थापन जसिन विषयमा प्रशिक्षण हो अन्तर्क्रिया हुल्बा। तालिममा एकेन्द्र तिमुल सेना, केशर बहादुर थापा, संगीता शाह, कल्पना खड्का, मुकेश नेपानी, उषा चौधरी, मंजुविका लगायत सहजीकरण कर्लबाट। चार दिनसम्म चल्लक तालिममा टिकापुर नगरपालिका भित्रकै 60 जना महिला अगुवा सहभागी हुल्बाट। तालिम समापन कार्यक्रममा बोल्दै इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरकै प्रहरी निरीक्षक मुकेश नेपाने महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न नेपाल प्रहरी दिनरात खटलाको एमह तालिमसे प्रशिक्षित महिला अगुवाकै सहयोग हुनाबुटीबाट। तालिमके सहभागी प्रतिभा आचार्य चार दिनसम्म धेर विषयकै जानकारी पहिला बुटीलबाटी। अरू सहभागी महेन्द्र गिरी, सामाजिक काममा लक्ति रहल, असिन विषयकै ज्ञान देना, वडाकी कार्यालयकै मजा काम हुलको सामुदायिक प्रतिकै जिम्मेवारी बहलक बुटीलबाटी। लम्बा समय पाछा टिकापुर खुल्ला महिला फुटबल प्रतियोगिताकै आयोजना हुलक यहाँकै खेलप्रेमीहरूको खुशीबाट। असिन प्रतियोगिता आयोजना हुलक खेलप्रेमीहरूकै केलाक अवसर समेत हुलबा। उहाँ उक्र बटुलोबाट खेलप्रेमी कमल कार्की जसिन अब्र खेलप्रेमी रोशना रावल फे अस्ता महिला फुटबल प्रतियोगिता हुना महिला हुकन केलाक अवसर र खेल प्रदर्शन गर्न माध्यम हुलक बटुलोबाटी। अब टिकापुर युथ कप टिकापुरकै आयोजनामा शुरू हुल खुल्ला महिला फुटबल प्रतियोगिता जारी रहलबा। अस्तंका प्रतियोगिता हुटिरहल खण्डमा छात्राहुकन फुटबल सिक्ना सह सुरिना देगिलवा खेलप्रेमी अनिल कोइराला विगतमा छात्रा फुटबल प्रतियोगिताकै दिनह सम्झती अबकी पहिला फुटबल प्रतियोगिता धेर नै परिष्कृत हो स्तरीय हुल बोटिलोबाट। अस्तंकाकै आयोजना हुना प्रतियोगिताकै एक यी एउटो महिला फुटबल खेल नै हो के महिला हुकुनके कुस्कर सेक्नाके साहस दिना बुटिलोबाटी मोइटा विस्त। युथप टिकापुरकै महिला फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न जुन साहस गरल ऊ छात्रा हुकुनके लागि महत्वपूर्ण रोलक हरितिमिल सेना बुटिलोबाट। शंकरकै आयोजना हुना प्रतियोगितामा स्थानीय हुटी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै खेलाड़ीको उत्पादन हुना हुलक असिन प्रतियोगिता हुना खेलाड़ी हुकुनके लागि मजा अवसर हो। खोज खबरमा फेर से विश्राम विश्राम पाछ फेर से विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
3: जब जब गर्मी महिना आउँछ तब तब अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरूको याद आउँछ। म्याङ्गो, लिची, कोला, स्ट्रबेरी, कुल्फी, चोकोबार, चोको फनबार, आहा कति मिठो, मलाई त साह्रै मन पर्छ। यति मात्रै कहाँ हो र, शुद्ध दूधले बनेको अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमको खोवा कुल्फी, कर्नेटो र पार्टीहरूको लागि फ्यामिली प्याक, पार्टी प्याकका सुविधा हुनुका साथै अन्य विभिन्न फ्लेभरका आइसक्रिमहरू र सादा आइस बलक पनि उत्पादन गरिन्छ। मैले त वर्षेनी खान्छु। अब खाने पालो तपाईँको जुन ठाउँ जानुहुन्छ उही ठाउँ पाउनुहुन्छ अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरू। एकचोटि खोजी खोजी खाउँ है।
4: यदि तपाई अमूल्य ब्रान्डका आइसक्रिमहरू बिक्री वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने धरौटी राखेर डिप फ्रिज उपलब्ध गराउने सुविधा रहेको छ। सम्पर्कको लागि बर्दादेवी डेरी उद्योग टिकापुर 1 ब्लक नम्बर 13, सम्पर्क नम्बर 98584 89455 र 98673 69622।
3: रियल मिल्क, रियल आइसक्रिम, अमूल्य आइसक्रिम, खोजी खोजी खाऊ यी ब्रान्ड का आइसक्रीम जहां पनि उपलब्ध छ।
5: जानकी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना।
6: नेपालको संविधानको भाग तीन मौलिक हकको धारा 39 अन्तर्गत बाल बालिकाको व्यवस्था भएको र बाल बालिका ऐन 2075, बाल श्रम ऐन 2056, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराइएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वतः बदर हुने भएकोले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर, ग्यारेज, होटल, कारखाना, गिट्टी, बालुवा, घरेलु कामदार, गाडीमा सहचालक नलगाउन साथै धूम्रपान, मध्यपान, सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बाल बालिकालाई संलग्न नगर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। यदि कसैबाट कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही हुने बेहोरा सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
5: अध्यक्ष गणेश चौधरी, बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका जानकी कैलाली।
7: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
8: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
7: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था। तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
8: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी ही जाए।
9: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846777417।
2: विश्राम पाछ फिर से स्वागत बा। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान 11 बजे बैठकबाट। आजको बैठकमा फेस सरकारकी नीति तथा कार्यक्रमकी उप छलफल नियन्त्रता पैनबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सदनकै संयुक्त बैठकमा सोमबार सरकारकी नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न रही। सदनकै बुधबारकै बैठक नियमित कार्यसूचीमा नै प्रवेश नगरकै स्थगित हुँदा सदनकै सभाम्बित कार्यसूची अनुसार नीति तथा कार्यक्रम अनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नबाट चालू सदनकै अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजेट समेत प्रस्तुत हुन वा अस्थाकरकै राष्ट्रिय सभाकै बैठकमा फेरि 11-15 बजे बैठकबाट बैठकमा सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम उपरकै छलफल जारी रहन सम्भावित कार्यसूचीमा रहलबा। जापानमा लागू कलक नयाँ भिसा नियमकै कारण नेपाली सहित विदेशी छोट व्यवसायिक र गम्भीर संकटमा परलबाट विशेष छोट तथा मध्यम स्तरकै रेस्टुरेन्ट, खाद्य न्याय तथा खुद्रा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै रहल विदेशी नागरिक र व्यवसायी बन्द गर्के स्वदेश लौट्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुँदा जापानी मीडिया हुक्र लेखबाट जापानकै अध्यागमन सेवा एजेन्सी 27 अक्टोबर से लागू हुन गर्के बिजनेस म्यानेजर भिसाकै लागि पूँजी सम्बन्धी मापदण्ड कड़ा बनिदोबाट नयाँ नियम अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्तीमा 3 करोड़ एन गरिब 190,000 अमेरिकी डलर पूँजी आवश्यक पर्न व्यवस्था कलबाट इन्स्याका 5 मिलियन एन हुइल पुगल रह अस्तका परिवर्तन विशेष गरी विदेशी समुदाय सञ्चालन कलक छोट व्यवसायिक र अप्रत्यक्षमा असर पर्लबा। टोकियोकी नेरी क्षेत्रमा हङकङ शैलीकै रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै अहिलेक 47 वर्षीय चानका इले नयाँ नियम पूरा गरल नै सकल्पा छ। आफ्नो रेस्टुरेन्ट बन्द गरके निर्णय कलक जापानकै एक अनलाइन द असाही सिम्बु लेख्लबाटी कोविड 19 महामारी पर्के कलक कुछ हाल लिख नाफामा पुग्लको उहाँके रेस्टुरेन्ट सान माई सान नेरी मे 20 अन्तिम चो सञ्चालन हुनेवा रेस्टुरेन्ट सजिलै छोड्न चाहलक नै रही तर विकल्प नै हो कि उहाँ बटेलो बाटी उहाँकी जापानी टेलिभिजन नाटक खेती हुर्कलो जापानमा बस्न सपना पूरा गरके लम्बा समय बचत गरके सन् 2020 रेस्टुरेन्ट खोलके रही व्यवसायी मजा चल्लक 5-3 करोड़ एन पुँजी पुगेना सम्भावना नै हुर्पा छ अन्त बन्द गर्न निर्णयमा पुग्लक उहाँ बटेलो बाटी। समाचार संघ खोज खबर वाली जनाइसे पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फेर सेक्छौ। फोटोकपी पिना पानी में ठक्की उपभोक्ता बढ़ी मूल्य लिना कार्रवाई करना नागरिक की कहाई। पश्चिमी प्रणाली के प्रभाव देवदर्शन क्षेत्र में वर्षा की संभावना। प्रतिनिधि सभा बैठक बैठी नीति तथा कार्यक्रम छलफल। ओ जापान में नया भिसा नियम नेपाली व्यवसायी समेत संकट में। रीटा बुक्ला खोज खबर अत्र प्राविधिक मित्र छपीलाल चौधरी धन्यवाद देती आबुकला खोज खबर से मई सीता चौधरी बिराहीटु एक पांच 12 बजे की खोज खबर सुन सकी सामुदायिक रेडियो टीका पूरा फेम सुन्टी रवि राम राम।

0: नमस्कारमै सबको ग्राहक व्यापारी शुभ चिन्तक दादु भैया दिदी बहिनी क्रममा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: हमारे यहाँ थारू पहिरन के लहंगा चोलिया धोती सिलाई कना के संगे रेडीमेड भी उपलब्ध कराए जाए और कुर्ता सुरुवाल फैशन डिजाइन के कपड़ा सिलेना और सिलाई कटाई के तालीम भी करा जाए। एक तो सेवा करना मौका जरूर देवी।
0: अभी फैशन बुटीक सामुदायिक पुस्तकालय भवन टीकापुर कैलाली संचालक प्रतीक्षा चौधरी फोन नंबर 9868770825।
2: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ल झोला है, मरम्मत करा जाए। एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
1: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
2: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: नयाँ वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सक्कु ग्राहक व्यापारी शुभ चिन्तक दादू भैया दिदी बहिनी हुकन म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आज महीन टिकरी वो घोंगी बड़ा खेना लगता कहाँ जीना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खेना मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलत चलो जाए मैफन संगे जीन
1: चलो तो चलो।
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बो सेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनुआ रोड जनक कल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9806101186 थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली। त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स आफ्नो ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक आफन्त इष्टमित्र साथी भाइहरूमा नयाँ वर्ष 2083 को मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। साथै हाम्रो यहाँ ई रिक्सा अटोका पाट पूर्जा पाइनुका साथै ई रिक्सा बिक्री पनि गरिन्छ। त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स सशस्त्र प्रहरी गढ नजिकै टीकापुर कैलाली
2: संचालक चन्द्र प्रकाश रेग्मी र रविन्द्र हमाल सम्पर्क नम्बर 9854447244 र 9854422233।
0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
3: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी ही जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: नयाँ वर्ष 2083 साल को हामी हाम्रा समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। हाम्रो यहाँ धेरै डिजाइनका झोलाहरू उपलब्ध गराइन्छ जस्तै स्कूल ब्याग क्यारिङ ब्याग लगेज ब्याग फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न किसिमका ब्यागहरू अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रिएका झोलाहरूलाई मरमत पनि गरिन्छ। रत्गैया झोला उद्योग रोड टीकापुर कैलाली संचालक रामप्रसाद चौधरी सम्पर्क नम्बर 9844222373।
2: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग लगायत देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उत्साह र उमङ्ग सहित सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण कस्मेटिक भान्सामा प्रयोग हुने सामान यसै गरी जुत्ता चप्पल खेलौना प्लास्टिकका सामान सरसफाईका सामान र फास्ट फूड का सामान अब एकै ठाउँमा पाइन्छ।
0: सेभेन रेनबो मार्ट टीएमसी रोड जमरापुल नजिकै टीकापुर कैलाली संचालक भेन्टीराम चौधरी मोबाइल नम्बर 9845002008। ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो
5: जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या
0: यो टीकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
5: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
0: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
5: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
6: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
7: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
5: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28
0: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा प्रतीक बुक्स एण्ड स्टेशनर्स टिकापुर सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग इष्टमित्र शुभचिन्तक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ प्रतीक बुक्स टिकापुरमा सम्पूर्ण किताब तथा कपीहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्
8: सञ्चालक नवराज गेवाली टिकापुर कैलाली

टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: बुका पिए रही था कबू पेंसिल ले रही था कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक सौ सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: शैक्षिक सत्र 2083 का लागि हिमालय मावि घियामा भर्ना खुल्यो। नयाँ वर्ष 2083 सालको सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित शैक्षिक सत्र 2083 का लागि हिमालय मावि घियामा कक्षा बाल विकासदेखि कक्षा नौ सम्म भर्ना खोलेकाले आफ्ना नानी बाबुहरूलाई समयमै भर्ना गर्न हुन सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। हिमालय मावि घियाका विशेषताहरू शान्त वातावरण सृजनात्मक तथा दक्ष शिक्षकहरूद्वारा पठन पाठन गराइने कम्प्युटर ल्याब तथा विज्ञान ल्याबको व्यवस्था भएको प्रधानाध्यापक हिमालय मावि घिया कैलाली।
4: गरेको भए होइन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
5: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्सुरेन्सले दिन्छ भर पर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज न कुनै फाइनेन्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
4: सहारा हेल्थ इन्सुरेन्स
5: शिखर इन्सुरेन्सको सहकार्यमा
4: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
5: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
6: विद्युत महसुल भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गतेबाट टीकापुर वितरण केन्द्र र लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित विद्युत महसुल काउन्टर बन्द गरिने लक्ष्य राखिएकोले विद्युत महसुल अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गर्न हुन सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। विद्युत महसुल अनलाइन भुक्तानी गर्ने समय बिहान 8 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।
7: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

जिगुर बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपन के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम मझेरी के सलाह के बैठक सको रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रह स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहो नाम विषय नवमी का भाई टेक में बैठ के साथ देते ही भाई आकाश चौधरी और मई बाटो अपनी अपने संख्या मैं मिशन संगारी कसिन बहाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई भी मैं एकदम आराम बाटो अपने एकदम आराम हुई भी कना भरपूर आसने बाटो काबा हाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम के संगे संगे एकदम आज ये वैशाख महीना के अंतिम दिन यानी कि वैशाख महीना फेन और आगे हेरी न लगभग लगभग हमारे ये महीना फेन कसी के नया वर्ष आयल कसी के नया वर्ष वर्ष के एक महीना कसी के और आयल करना चीज पता ही नहीं चला। अब हमारे ज्येष्ठ महीना प्रवेश करना बेला हुई थी काल से ज्येष्ठ एक गटे हुई जाये और ये महीना और अलग पता नहीं चला सरसर सरसर समय बीती जायटा असके बीती बीती खेती किसानी के समय फेन आज सबको जाने शायद आजकल बिहार सीटना बेला हुई थी बाबा अपने हुके बिहार सीटना क्रम करती हुई विशाल किसान दाजू भाई हुके जे जहां रहे से फिर अपन अपन ठाव से पके फे मतलब तैयारी में हुई भी का नाम है अपने जानकारी करती जहां रवि स्वस्थ रवि व्यस्त रवि मजे रवि खुशी रवि हंसी रवि ई गर्मी महीना है ख्याल करती अपन काम कर भी का अनुरोध निवेदन करती। कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेश कर एक रमायलो गीत से अपने हुके चाहिए हवन डायल करते कर भी अपन कोई भी टैलेंट गीत गजल भावना मुक्तक चुटकेला शायरी शेर चिड़ी सुरगन की आवाज जानवर की आवाज नेतन के नक्कल केकरो कैरिकेचर कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा सुनाएक लग कार्यक्रम में सहभागी जनाई के करबी तब संग लग कार्यक्रम के शुरुआत में हमने श्री गणेश करब एक रमाइलो गीत से गीत के पास में इन्हें बाटू डायल करते करबी 091-5-61-255 के लाइन खोलेगा तब संग लग एंजॉय करी इधर रमाइलो गीत से

आज मायाको बेलकुले रमाइलो गीत जोली कार्यक्रमको शुरूआत नै कार्यक्रममा बाटोमा मिशन भर्खर रेडियो खरल विकास यी हो कार्यक्रम मझेरी हरेक अथवार के सोमबार मंगलबार बुधबार और बिहीबार हाम्रो सातामा चार दिन समय ठीक एक से करीब 1:45 बजे से अपने उनके संगे यात्रा करे। अगे अपने गुरु चाहे जहां रही खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपचार में यात्रा में जहां रहे से फेन कार्यक्रम में सहभागी जनाबी कार्यक्रम में आई भी अपने को हमार रमाइलो सहभागिता रही रमाइलो गप ही रमाइलो गप संगे संगे अपने को हमार संगे जही अपन कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा हुई जस्ते गीत गाए जाना थी भी गीत गाए आई गजल के है जाना थी भी गजल की है मुक्तक भावना चुटकिला शायरी शेर के है जाना थी भी आई ओखलक हमने लाइन खुला के लिए बात 091-5612-5615 लाइन खुला के लिए बाटी कार्यक्रम में सहभागी जनाबी का नाम है आप लोग अर्जी अनुरोध और निवेदन का थो तो फटाफट डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनते कर भी अपने को हमारे रमाइलो गप के संगे बातचीत फेन हुई का नाम है आप लोग जानकारी कहना चाहम करीब करीब 1:45 बजे से हम यात्रा करे लगा देवी ई दोपहरिक समय अलसी समय है कुछ असम रमाइलो करे अलसी समय है कुछ असम रमाइलो रसपान करे कार्यक्रम में सहभागी जनते कर भी का नाम है जानकारी करते फैंस एन्जॉय करब एक ठाव रमाइलो गीत से गीत के बाद समय डायल करते कर भी 091-5612-5015 लाइन खुलेगा।

0: ले रमाइलो गीत कार्यक्रम में जोले अपने हुकन केला कार्यक्रम बाट समय मिशन में के साथ देते हैं भाई आकाश चौधरी और यह रेडियो टीकापुर एफएम 1 मेगाहर्ट्ज उसके हमारे वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर एफएम एप्स हमरो पातो मार्फत पे अपने के हमारे सुनने से ठिकाना में आप लोगन जानकारी करती बैठो तो फटाफट जो डायल कर भी सुनने का 9561255 था 09156125 लाइन एकदम खुला बा कार्यक्रम में सहभागी जने भी कर से अपने घर हमार रमाइलो गफी सगारी उगे हमरे हरेक अथवार के सोमवार के दिन विशेष करके हमरे अपने हुकन के संगे निशाना लगाई ठीक है निशाना संगे अंताक्षरी तब जाके हमरे अपने के गीत फरमाए स्वस्थ के तब जाके हमरे बिहार के दिन आज एक दिन कोई चाहिए मतलब थाईलैंड कोई लाइन में आते बोल करना चाहूँ केवरी कहाँ से हजूर राम राम
1: राम राम हजूर राम
0: नारायण जी कैसी हाल खबर
1: बड़े बाकी
0: हमारे एकदमै मजा बा बढ़े बाटी अपने तमनी से मैं पता पैती रहूं कि अपने लाइन में आएगी लेकिन लागत में तरह का कर भी यहाँ पे रोटेशन बात बटवाद बटवाद बटवाद ठेके ठेके लाइन में लेह पड़ना रहा ना
1: हाजिर
0: ओके ठेके आज हमन कहाँ से संपर्क में आईली
1: घरे और भक्कर खाना खा
0: देते अब चाहिए खाना खाई पुगली सकार कतरन गुट्टी निकल दी थी अपने घर से
1: मैं तो 5 बजे निकल गई कबो 4 बजे निकल गई छोरी
0: बाप रे वो तो जुन तो अंधारे रात का हूँ
1: अंधारे ले से हो जाए काम हमार और काम अर्जेंट वाला काम
0: ओके कार्यक्रम में सहभागी जनैली एकदम खुशी लागल कार्यक्रम में मेहनत करबो तब ना फल मिली नहीं नारायण जी
1: हजूर हजूर
0: मेहनत नहीं करबी तो कहाँ से फल मिली हम अब 7 बजे 8 बजे से हम सुटना मनेंगे तो अपने 5 बजे 4 बजे काम करत करत तो बाप रे अपने तो अटल जून सम बहुत मतलब आर्थिक संकलन कैसे कट हुई भी नहीं
1: हजूर मोटा है
0: दिहाड़ी निकल जाए थी अटल जून सम
1: हजूर हजूर निकल गई का फल लास्ट 2000 कमा देना
0: ओहो दैनिक 2000 कमाई भी कर तो बाप रे तब काचा हल ना तब से
1: कब हित कब नहीं ना तो अगर पार्क दिन भाई मोर बाबे अभी 250 रुपया पार्क में कमे माप दे लिए तो
0: तो कबो 3000 कमाई थी भी कबो 2500 कमाई थी भी कबो 2000 कमाई थी भी कबो 1500 एवरेज में 2000 ठक के होगा
1: ओ है ना तो कबो माल नहीं मिलत सर
0: चलो को, चलो कोई बात नहीं अपने जहाँ से फिर खुशी रहे पड़ल नहीं खुशी मेहनत करे पड़ल सब कुछ ठीक हुई नहीं ओके कार्यक्रम में सहभागी जन भी खुशी लागल आज सही का सुने भी तो हम
1: अरे छोटा छोटा माइडर गीत पुराना गीत का अपन पुराना जो हाँसी मजा वाला
0: लीली शुरू कई धारी शुरू कई धारी हमरे सुने के लगा टोल बाटी
1: अरे मैं ही तो गरीब के लरी कह लकरी बेची बेची के अरे मैं ही तो गरीब के लरी कह लकरी बेची बेची के अरे लन थैले बुधा मोती दी हो तेलती हसती चली गए अरे लन थैले बुधा मोती दी हो तेलती हसती चली गए गीत हजरत
0: नारायण जी
1: हजर
0: अपने के गीत सुन के तो पहले रात रात के नाच करेंगे जस्ता दसई मा बरकदसिया दिया देवारी में जब रात के नाश करेंगे रतियक नाश
1: हाजिर
0: वो ओकरे याद आयल जे
1: वो याद में गा देना और मैंने बिसर के नहीं जिसे वो तो चुके जगह लिखो है री
0: ओके
1: हाँ परंपरा हमार तारुण के पुरान गाना का बल चार जा रहे है मतलब और दिन नहीं गई थे
0: थोड़ा बिल्कुल हमार संस्कृति हमार संस्कार कुछ फर्क नहीं
1: हजूर
0: तब मारे फिर हम गर्व लागत के हमारे संस्कृति में आगे बाटी जैसे
1: अपन संस्कृति देखा पड़ल बजाय पड़ल नहीं हेरा पड़ल कना अभी कह पड़ल जो भी जमीन से घरे सुनती तो मजा लगती ना
0: ओके ओके चलिए कोई बात नहीं कार्यक्रम में सहभागी जन ली खुशी लागल अब भाई हम एक गीत बजाब अपने लग अपने किन किन सुनाई चाहे नाम भी
1: अब सबसे पहले अपने वो अपने संग अगारी बोलने में सर
0: है
1: और जब भी रेडियो सुन के कार्यक्रम सुने और मोर नाथ में जब रहे खांसी बाजार में टीकापुर पलीदार सुनते हैं बड़े तरख थे चौतारी में हेरी होने थे सीनल मने जान ली नारायण चिन्ह नै चिन्न सक्छु धन कटो भाई भाइ
0: हजुर हजुर राम राम महा फोन केले रहे नारायण चौधरी नारायणजी जगतपुर से अब हाल चाहिँ खाना खाइगिल बाटो सकरही निकर्जी ठुकाम में और पुरान संस्कृति है माया करत हूँ पुरान संस्कृति गुनगुनारे नु कहे कहती रहे और हम हमेशा को जाने टेक्निकली भाई आकाश है मिहिन फेन ढेर समझती और सबको संग रहे पलेदारन अपन जमा जतरा फेन रुखवाटर बिसाइट हुई कहते हैं वहां के शायद ग्रुप हुई वहां था विषय ना भेटघाट करना सबको जाने वहां का समझा नहीं समझती समझती हमारे से बात बता के गिने वहां है धन्यवाद है दिन में फेन से हम संपर्क में ही यानी कि संपर्क कर ही कार्यक्रम में जरूर से सहभागी हुई कहना अनुरोध कर दिया अठे पर ठाव गीत जोड़ गीत के पास मैंने बाटो डाल करते कर भी 91.5 61.2 सोना के लाइन खोले बात तब सुनकर एंजॉय करी ये रमाइलो गीत सुन के

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत जोडी कार्यक्रम कबु महिन छोरी के तू अकेली रहे सकबो का गाना गीत रहे रमाइलो गीत कार्यक्रम जोडली कार्यक्रम में संगाली भर्खर रेडियो खोला लुबी कार से यह रेडियो टिकापुर एफएम 1 MHz जस्ते हमारे वेबसाइट www. टिकापुर एफएम डट ओआरजी मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप हाम्रो पात्र नेपाली पात्र मार्फत इन्टरनेट के पहुँच हो सँगै अपने ठाउँ से सुनि सक्थे सँगै रुपये तिम्रो व्यापारिक ब्रेक यानी कि व्यापारिक विश्राम लेना बेला हो गेल बाइक के सर्ट कमर्सियल ब्रेक हो जाए ब्रेक के बाद मैं यही बाटो ब्रेक के पास में यही बाटो अपने डायल करते कर भी 0995-61-255 लाइन खुले बा
1: ऐ विवेक उठ्याङ खास झप्पा सोर चिन्छ हो
2: मर्किनु मर्किनु
1: ऐ सङ्गरी घर फुटबल बन्द गर त विवेक खान उहाँ कहाँ हुँदैन उहाँ झप्स्यारो नाचाउ कहदन
3: ओ हेरो त उहाँ सप्पा भागल पातल कि का हो विवेक खान ए खरी उनी फुटबल ह्याराइ लग्छ झन् का जस्ता पो आपनन
2: देउ हाली मेन त सप्पो काटल मुना मुना
1: विवेक जिना क्या सङ्घारु देव साँझ पक्का ढ्युनी चल्क बैठ हाम्रा टुहान स्वास्थ्य केन्द्र पुगैबी ऐ पारस तू घर दाबु हन मोटरसाइकल लेख आएको
3: हो
1: त
3: हो विवेक खन यहाँ खुला ठाउँमा सुताए यो झल्याङ झुलुङ निकरा खन मुहारी काटीले ओही हन हक दिहेटु पिल्लीमा काटला खल सोइटीबा काटल ठाउँमा न छु चलाइ निहुइन
1: अब मै विवेक खन सजिल हुइन कै खल वाकर कसकेल पिटी तान धीरे धीरे खोल ढेटु ओ घरि वो मुन्द्री फेक खाद्यान
3: बिठारो छन् मै यह जाला विवेकको जुट्टा ऊ मजा धीरे धीरे निकाल दिहेटु
1: युर्चसिन सापन का दसाई खतरनाक नी रह समय में जो उपचार कराई से लसे दिखा सपन का कातल मन यहाना पे बचाई से जिठा सपवा कटलक मन यहाना झट्टा से झट्टा उपचार केंद्र में फुगाई से लसे वही हना भारी क्षति हुना से जोगाई से जिठा
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाक लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैफ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे छे जिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
0: नयाँ वर्ष 2083 सालको हामी हाम्रा समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ हाम्रो यहाँ धेरै डिजाइनका झोलाहरू उपलब्ध गराइन्छ जस्तै स्कूल ब्याग क्यारिङ ब्याग लगेज ब्याग फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न किसिमका ब्यागहरू अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रिएका झोलाहरूलाई मरमत पनि गरिन्छ रत्गैया झोला उद्योग रोड टिकापुर कैलाली संचालक रामप्रसाद चौधरी सम्पर्क नम्बर 9844-22373

0: हजुर, व्यापारिक विश्रामको पाँच एफएमको स्वागत भयो कार्यक्रममा। कार्यक्रममा बाटो मामिसन निकै साथ धेरै भाइ आकाश चौधरी और भाई बाटो अपनी क्याप्टन संग्राम मामिसन कोही टेलिफोन लाइनमा आएर बाटो बोल गर्न चाहन के उठे कहाँ से। हजुर राम राम।
1: हजुर राम राम।
0: मालु राम जी हो?
1: हाँ बस मैहरी।
0: मालु राम जी की आवाज सुन के जान ले ठुका तब हमारे। कसिन बा मालु राम जी के हाल खबर?
1: अबे ठीक है बहरी, अबे एक छुट्टी हो है, अबे अबे मैं कहूँ अब जाए घूमने का कि अब घरे में बैठ बैठ के साथ चिल्ला के हंस कर रखता हूँ तो बुना चाहे हमारे थोड़ा नाश्ता पानी खाए जाए घूमे जाए क्या।
0: अच्छा तो घरे में बैठल बैठल मिच्छा गिली घाम फेर रहा नहीं?
1: हाँ घाम फेर रहा तो अब की मन कठे घूमे नाई जी हो घामे में ना तो कहा फिर नाई घूमे जी वो तो फेरे बनत नाई जी वो तो फेरे बनत ना
0: ओहो बैठल फिर है नहीं सकना घूमे फिर जाए नहीं सकना मेरा कौन कौन मेरा अवस्था बना भाई का करूँ करना मेरा अवस्था बा का मालू राम जी
1: का करूँ कहाँ जाऊँ कहूँ तक खाए जाऊँ की का करूँ कहना हजार मिनट बुरी हो के सूझी वो
0: अरे कोई बात नहीं खुशी लागल अपने से बात बतवा के आज कब जो सुनाई भी हम हन
1: आज एक ठो पहुनन के उस पहुनने वाला उस ले रस लाट मई का एक तो पहुनने वाला कहानी रस लाट का अब
0: कटर बरार बा वही
1: आशे लम्बन आई हो
0: ली फटाफट हलाल हलाल सुनाई नहीं
1: अरे हिरी एक ठो घर पहुना आए इतना तो मने शान तो थोड़ा कहत की अब ठीक क्यों मेरे मच्छी मारे गेल रहा तो मेरे कहत की अब आज मोर काठी नहीं हो तो काठी नहीं हो तो कहके पहुनक लाठी तो बकर के ले अब लाठी से कहूँ भात दी ना तो ले तो कहके अब मच्छी पाया लगा तो अब कहत अरे खाई नहीं से तो कहके बाम ऊंचा मुन तक खाई नहीं हो कहके अच्छे रे खे रे खे वो सांपन के खेरे हंस कह के उल्टा पढ़ा दे तो कहत की ले मच्छी मार के मैरन मुंट मई खेन की तो हिंदी में कहके बस अब जमीकार भात ढाके भात के कही जमी अपने खा ले अब वो अब खेरे खेरे पहुंचे गए तब मुंट खाए बस तब आज फेक हंस अरे कहके पैसे लगन हेरी अब
0: ली कोई बात नहीं आउरे बेला फेन से मजा के बटो भी नहीं वहाँ बैलेंस नहीं बैलेंस वाला लागल गए के कहती नहीं कहे कि बैलेंस कब कब हो रहा है जब बार बटोई जी रास्ता रहो कहती अब लगभग हमने कार्यक्रम के अंतिम अंतिम समय में आपको गल बाटी हमारे अटल बटन रेडियो सुन के साथ दिले अपने सबको जन धन्यवाद दें टेक्नो बैंक के साथ हुए भाई आकाश चौधरी भेटे तो धन्यवाद दें अंतिम एक छोटा माइलो गीत छोरम छोटी मई कार्यक्रम संचालक और कार्यक्रम में भेटना बाचा करती आएगा छह राम राम जयदेव जय गुरु बाबा शुभ दिन अब के पर शुभ रहे रेडियो टीकापुर एफएम सुनते कर भी।

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सक्कु ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनी हुकन में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आज महीन टिकरी वो घोंगी बड़ा खेना लगता कहाँ जीना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खेना मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलत चलो जाए मई फैन संगे जिम
1: चलो तो चलो
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बो सेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनवा रोड जनकल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9806410186 थारू रेस्टुरेंट मुनवा रोड टीकापुर कैलाली। त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स आफ्नो ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक आफन्त इष्टमित्र साथी भाइहरूमा नयाँ वर्ष 2083 को मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। साथै हाम्रो यहाँ ई रिक्सा अटोका पाट पूर्जा पाइनुका साथै ई रिक्सा बिक्री पनि गरिन्छ। त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स सशस्त्र प्रहरी गढ नजिकै टीकापुर कैलाली
2: संचालक चन्द्र प्रकाश रेग्मी र रविन्द्र हमाल सम्पर्क नम्बर 9854447244 र 9854422

0: को घरका लागि आपतकालीन अस्पताल खर्चमा क्षतिपूर्ति दिन्छ, त्यो पनि एकदमै थोरै लगानीमा।
1: यति गरेपछि धेरै राहत हुने रहेछ त।
0: हो कान्छा, अपर्जट आउने आपतमा राहत भनेकै सन मेडिकेयर। कुरा बुझ्यो होइन त तिमीहरूले?
1: चिया पनि खाइयो, कुरो पनि बुझियो है केटा।
2: टिकापुर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको अनुरोध। नेपालको संविधान 2072 तथा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने आदर्श वाक्यका साथ सम्पन्न हुन गइरहेको शैक्षिक सत्र 2083 विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण अभिभावक तथा सरकारवाला जीवहरूले विद्यालय उमेरका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी अभियानलाई सफल पार्न सहयोग गरिदिन हुन सादर अनुरोध छ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा टिकापुर कैलाली।
3: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना उनेना पट्टा नि पैना त
4: अनि गहना बनाइना त हो दुकान खोज्ती खोज्ती परेशान आटौ कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
3: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मा से गहना बना कान्छे के कतरा सुघर बना कन ल बाटी
4: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाइ हो जाइका हु सामुएल ज्वेलर्स मा गर गहना बनाइ
5: सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
3: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुनसानी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ अर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 9864841208 ओ 9846239161।
6: तहरा राजा जी का दिलुआ टूट जाए
7: बल्ल घरक भिटा निखौरैदा
8: मुस्कान रिथाई घरक भिटा आमी निके निउराइ छ कि का छेटो बस्ता खारन कला मिनी ले जाय पना रह
9: आब उराइ जा डांटी बादा
8: ले ले वही मिनी बना कर दे दिया तू ले जा दियस ना
9: हाँ बिठा दई ओहो हेरो यहाँ भित्तामा त ढिलाको बा माथिले कबड्डी हे परल टिका हाँ कबड्डी अय्या दाई सपका डरल
8: दाई खै खै कहाँ काटल छै
9: यहाँ दाई ये दाई नाजमका डरल
8: अरे लेउ हाली क्यु बाटो म छै मुस्कानबाट सपका डरलस लेउ हाली
10: काबिल काकी काबिल
8: हेरो न राकेश मुस्कान न सपुआ करलस कल
10: ना त्याओ काकी तो मुस्कान न्या त्या का शांत होकर बैठो ना बेन काकी मुस्कान न श्वास को न सुटाई हलचल निका राखना
8: बैठा भैया मुस्कान छाई श्वास को सुटो त
9: बैठा
10: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा गर गहना निकब जैना मेकअप फाफर बना दी ओ हाथक चुड़िया निकाल दी वाकर कटला छात भर नहीं चलाखना
8: बैठा भैया सबको कटला ठाउ आंजर पांजर चीर का इंजेक्शन ले टान का अथवा मुंह ले सूस का बीस को निकले ना हो कि
10: नहीं नहीं काकी सबको कटला घाव आंजर पांजर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई थे नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
8: उसी नो कल से झर मेरा लान था वही नीटा था वाकर सबको कटला ठाउ और लगा दी उठा ना नानू
10: उठे नहीं हुई काकी घरेलु उपचार जस्ता कि झरबैरा जंगली खरबुटी ओ जड़ी बुटी फे प्रयोग कराने हुई बुझली
8: बुझनु नानु बुझनु
10: बिना काकी रामेश्वरा मोटरसाइकिल लेखा आई कही झट्टा से झट्टा साधन खोज का एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाई सेक जाई कल से मुस्कान होना झट्टा सुमर बनाई सेक जाई दादा आई का अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओआरजी का वेबसाइट खोलती का तुम्हें हाँ डाटा हम कई का हरा पुरा हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओआरजी वेबसाइट फेक खुला हाँ हमार गांव से तो मिस्र है स्वास्थ्य संस्थामा को सर्पदंश से उपचार कई जिना रही था हो वहाँ ले जाए पर मुस्कान है ना
8: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई ला
10: ले ले ले काकी मुस्कान होना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बिच्चा में बैठा रही था झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केन्द्र में पुगाई।

0: যাই ফেলাছে মুস্তান হামা বচাইছে যাই
1: উইঠা উইঠা याद करी सपवा दस से मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बलाई सर्पदंश उपचार केन्द्र में जाख जान बचाई वहां कौनो सवारी साधन उपलब्ध निहुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगा कर फोन में से सुझाव ली
2: मोटरसाइकिल सापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो है व्यक्ति की छुना चलेना करनी हुई कबो काल मोल के खा समझन साफ फिर काट से संभव हुई सम कटुया सबको फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकल से हुक्र सबको विषहार अलग निरलग पहचान कई ख सही उपचार कर सहयोग उठा
1: यदि समय में उपचार कर सकल कल से सबको डसलक मन यहाँ बचाई सक दिखा वो हिम से हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दिखा सबको डसलक मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केन्द्र में ले जा डाली यही ऊ मन एक जिंदगी बचाए थारी मदद कर था भर पर्ना वो सही जानकारी लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैथा पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक दिखा
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: आरएमई स्कूल टिकापुरमा विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
5: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित आरएमई स्कूल टिकापुरमा नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ
4: आरएमई स्कूल टिकापुर कैलाली सम्पर्क नम्बर 091561250 र 091560712

0: सामुदायिक रेडियो टीका पुरएफएमके संजीत 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने स्वागत बा। खोज खबर से मैं सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल आप संप्रपात्र और नेपाली पात्र मफी सुनती हलवाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 द्वारा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हां साइकिल बढ़कर हां आवश्यक सामग्री वितरण। एचआईवी संक्रमित भुक्ति रह लंछना बारे छलफल। सुदूरपश्चिम प्रदेश में 3,812 जना एचआईवी संक्रमित नियमित औषधि सेवन करते। एएससी पूरक परीक्षा असार 1 गतेदेखि संचालन हुना। प्रतिनिधि सभा बैठक 35 जना संसद द्वारा संशोधन के प्रस्ताव। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 कार्यालय के महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका ओ बढ़घर आवश्यक सामग्री वितरण कलबाट वड़ा कार्यालय वड़ा मरलक 9 जना स्वयंसेविका साइकिल वितरण कल सफेद 10 जना बढ़घर मोबाइल प्लास्टिक के टेबुल 5 थान कुर्सी 3 के बाकस आवश्यक स्टेशनरी सामान वितरण कलबाट स्वयंसेविका ओ बढ़घर सामग्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमंधिता लो वड़ा छे दीपक चौधरी यहां हस्तांतरण कल रही। सामग्री वितरण कार्यक्रम में इंजीनियर राजेन्द्र रावल लेखा अधिकृत देवी कृष्ण जैसी जिन्सी अधिकृत दिला जोशी लगायत उपस्थिति हुई रहा। सामग्री पाल स्वयंसेविका ओ बड़घर खुशी हुलबाट। कैलालीकी टीकापुर में एचआईवी में हुई सकना लालथना व भेदभाव कम करना सरकार वाला हुकन अभिमुखीकरण तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम हुआ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय स्वास्थ्य निदेशालय स्वास्थ्य कार्यालय के आयोजन में कार्यक्रम हुआ। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीकी जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेश कुमार की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम में टीकापुर नगरपालिका कार्यभाग नगर प्रमुख रामबहादुर नागाजी विगत में एचआईवी संक्रमण हुलक जीवन दशीन के लक्ष्य चाहिए रलक समाज में अब औषधि खाइल पाछा बचना सके सोचाई विकास उलक संक्रमित मनोबल उच्च धरके आंखा बढ़ना आग्रह कलबाट नगाजी पालिका संक्रमित देती ऐलक पोषण सहित लाख बजेट घरलक में बजेट सुनिश्चित करना पहल करना प्रतिबद्धता व्यक्त कलबाट। कार्यक्रम में प्रदेश स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन केन्द्र के निदेशक जनक ढुंगाना संक्रमित उक्रा सामाजिक लालथना के कारण अब फे समस्या भुक्सी बटेटी स्वास्थ्य संस्था में फे बीर्म उक्रा भेदभाव महसूस करना हुलक स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सा के ध्यान देपना बटिलो संक्रमित के अधिकार उपचार के क्षेत्र में कार्यरत संस्था एचएफके प्रदर्शक संयोजक माधव पंत सुदूरपश्चिम प्रदेश में 3,812 जना एचआईवी संक्रमित औषधि खटी रह जानकारी दिलबाट। सुदूरपश्चिम के 19 स्वास्थ्य संस्था में एआरटी सेवा संचालन में बा कैलाली के 4 थो एआईटी सेवा संचालन में वहां उक्र एचआईवी संक्रमित भाइरल लोड जांच करना औषधि नियमित खैना हो स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य करना आग्रह कलबाट। पंत के अनुसार सुदूर के 9 जिला के तथ्यांक हेल कैलाली में सबसे ढेर बढ़ी 1,802 जना संक्रमित बाट दोसरो अछाम जिला में 562 ब्रेमे हुक्रबाट संक्रमित महिला की संख्या ढेरबा 2,041 महिला 1,625 पुरूष 110 बालबालिका 34 जना यूनिक अल्पसंख्या संक्रमित बाट। पालिका हुक्र तथ्यांक हेरलक टीकापुर में 150 जना धनगढ़ी में 244 लंकी चुहा में 194 गोदावरी में 291 जना रहलबाट वहां हुक्र संक्रमित दाई भवन के बच्चा समाज के व्यवहार के कारण असर पर्ना हुईलक एमएफए सकूजान ध्यान दे पर्ना बोटिलोट। कार्यक्रम यूएनडीपी के प्रदेशक संयोजक प्रकाश लेखक 2 दशक से आखा संक्रमित औषधि पैनाफे ढेर तटपरपरलक स्मरण करते अब ढेर सहसुलक बोटिलोट। वहां के सरकार तथा ढेरसिंह संघ संस्था के सहयोग में अब बिरमेहुक्र सहज औषधि यातायात खर्च वार्षिक पोषण सहयोग निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा लगायत के कार्यक्रम पैटी रह बोटिलो बाट। जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेश कुमार कार्यक्रम में उठलक बाट मंत्री समक्ष सुनेला व बजेट केलाक पहल करना बोटिलो बाट। स्वास्थ्य कार्यालय के एचआईवी फोकल पर्सन सूर्य कुंवर कार्यक्रम संचालन कर रहे। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण करना अभियान फे तीव्रता दिलबाट उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थित उज्जर पुल नजिक सरकारी जग्गा अतिक्रमण करके बनेलक अवैध संरचना हटेना 7 दिन सार्वजनिक सूचना जारी कलबाट उपमहानगरपालिका कार्यालय बुधबार एक सूचना जारी गर्दै वडा नम्बर 8 कि मुख्य सड़क क्षेत्रमा पर्न कित्ता नम्बर 65 के 13645.35 वर्ग मिटर जग्गा 9 साबिक त्रिनगर 2 के कित्ता नम्बर 232 3340 नेपाल सरकारकी अनुमति बिना भौतिक संरचना निर्माण कलगेन्द्रबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जनकराज भट्टद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा कहिबा उक्त स्थानमा रहलक अधिकार मिट संरचना कि सूचना प्रकाशित हुलक मिति 7 दिन भित्र आफ्नो हटना सूचित गरिबा तोकलक समय भित्र अवैध संरचना नै हेतुले चाहिँ स्थानीय सरकार संचालन 2074 तथा प्रचलित कानून अनुसार डोजर चलाएकी संरचना भत्किना हो कानून बमोजिम कार्यवाही गर्न चेतावनी समेत उपमहानगर दिलबाट थनगढ़ी उपमहानगरपालिका इन्स्याकफे नगर क्षेत्रभित्र मिश्रक भेरुसिन सार्वजनिक जग्गा सड़क किनारा हो तालतलिया खाली कर्नासेकलबाट मेयर गोपाल हमालकी नेतृत्वमा शुरू हुलक यी अतिक्रमण हटाइन अभियान नगरवासी यहाँ सकारात्मक रूपमा लिटिएलबाट यही विषयमा आवश्यक समन्वय हो सुरक्षाकी लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली वडा कार्यालय हो नगर प्रहरी बलह समेत बुधार्थ पठिलोबाट खोज खबरमा एकरी विश्राम विश्राम पासा फेर सेवी सुनतिर विश्राम मुदायक रेडियो टीका प्रो एफएम
1: भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो
2: टीकापुर नगरको प्रथम शैक्षिक धरोहर वीरेन्द्र विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि तपसिलको कार्यक्रम बमोजिम कक्षा पीजीदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
1: भर्ना कार्यक्रम
2: नयाँ विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम शुभारम्भ 2083 वैशाख 2 गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्रको पढाइ शुरू 2083 वैशाख 7 गतेबाट
1: वीरेन्द्र विद्या मन्दिरका विशेषताहरू
2: विद्यालय हाताभित्र स्वस्थ हरित वातावरण भएको
1: दक्ष र अनुभवी शिक्षकबाट अध्यापन गराइने
2: एकै परिवारका 3 जनामा 1 जनालाई निशुल्क छात्रवृत्ति दिइने
1: विद्यालयमा घेरा पर्खालका व्यवस्थाका कारण बाल बालिकाको सुरक्षाको निश्चितता भएको
2: सीसीटीभी क्यामेराद्वारा शैक्षिक गतिविधिको अनुगमन गरिने
1: नेपाल सरकारको नीति अनुसार जेहेन्दार दलित जनजाति महिला अपाङ्ग अनाथलाई निशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरिने अंग्रेजी मिडियममा पढाइ हुने पर्याप्त खेल सामग्री र खेल मैदानको सुविधा भएको
2: ई पुस्तकालय तथा पुस्तकालयको सुविधा रहेको
1: हालसालै जडान भएको शुद्ध स्मार्ट खाने पानीको सुविधा रहेको
2: विद्यालयको खेल मैदानमा नवनिर्मित अत्याधुनिक कवर हल भित्र विविध अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने
1: स्काउट प्रशिक्षणको व्यवस्था भएको
2: कम्प्युटर ल्याब र विज्ञान प्रयोगशालाको पर्याप्त सुविधा भएको
1: बाल मैत्री शैक्षिक वातावरण भएको
2: विद्यालय हाताभित्र स्वास्थ्य समेना गृह सुविधा रहेको
1: र प्राथमिक उपचार र विद्यालय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको
2: प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय टीकापुर कैलाली
1: फोन नम्बर 091-560-220 र मोबाइल नम्बर 98-584-23-220 र 98-678-80-911।

0: बाट टाढै राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
0: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
2: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
3: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
2: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
2: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
3: ईसीजी सेवा,
2: डिजिटल एक्सरे सेवा
3: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
2: फोन नम्बर 98484 27359 र 98482 73 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
4: शरीरमा लाल वा फुस्तर छुअबेर थाहा निमिना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुञ्जिना डाग देख पर्लसी हात गुरा झमझम कर्ना तथा मास सुहाक बठिना हुइलसी कुष्ठरोग हुइसेक्ठा।
5: कुष्ठरोग महिला व पुरुष जेहिफे लागसेक्ठा। कुष्ठरोगको शंका लगतेकी लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिङ अस्पताल INF नेपाल बाँके जानकी तीन मानपुरमा सम्पर्क गरी
4: महिला उग्र अस्पताल सम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण कराइक्लाक आफ्नो घरक पुरुष उग्र मद्दत गरी।
5: कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माणका लागि साइनिङ अस्पताल INF नेपाल बाँकेसे जनहितमा जारी सन्देश।
6: विश्राम पाछा फेरसे स्वागत बा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 सारुठिमी भक्तपुर 2082 सालके माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यासिके पूरक परीक्षाके समय तालिका सार्वजनिक कलबाट बोर्डके सूचना जारी गति पूरक परीक्षा असार 1 गतेसे शुरू हिनाबाट परीक्षा बिहानके 8 बजेसे 11 बजेसम्म सञ्चालन हुनेवा। सार्वजनिक तालिका अनुसार असार 1 गते अनिवार्य अंग्रेजी, असार 2 गते अनिवार्य नेपाली, असार 3 गते अनिवार्य गणित, असार 4 गते अनिवार्य विज्ञान तथा प्रविधि हो, असार 5 गते अनिवार्य सामाजिक अध्ययन विषयकै परीक्षा सञ्चालन गर्नबा। अस्तगरकी असार 6 गते प्राविधिक धार तथा संस्कृत विद्याश्रम तर्फके ध्येयसिन विषय हुनके परीक्षा हुनबा। परीक्षा असार 9 गते सम्म सञ्चालन हुना बोर्ड जनाबा। सूचनाके अनुसार 2082 सालकै मूल परीक्षामा नियमित समूहमसे सहभागी होके नन ग्रेडेड हुलक परीक्षार्थीके लिए पूरक परीक्षामा सहभागी हुन पहिलबाट बोर्डके परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मसे उपलब्ध गराउन जारीबाट परीक्षार्थीमा प्रवेश पत्र अनिवार्य रूपमा संगमा ल्याउन तथा मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी लगायतकै विद्युतीय उपकरण परीक्षा हलमा लैजान निषेध कलबाट परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकै परीक्षा केन्द्र परिवर्तन नै हुन फेरि स्पष्ट पर्लबाट। प्रतिनिधि सभा बैठक शुरू हुनबा। बिहानकी 11 बजे शुरू हुनक बैठकमा प्रधानमन्त्रीकै तर्फमा से अर्थ मन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले वार्षिक नीति तथा 2083-84 बारेमा सांसद उप्र उठिना हुलक जिज्ञासाके जवाब दिएन हुना कार्य सूचीमा संसद सचिवालयके महासचिव पद प्रसाद पाण्डेके अनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमके उप पर्लक संशोधन हुकनके निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कार्यसूचीमा उल्लेख भए। असंघका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित केला संसद बैठकमा सभामुख निर्णयार्थ पेश गर्न हुना सूचीमा उल्लेख भए। वह अनुसार अर्थमन्त्री डाक्टर वागले आर्थिक वर्ष 2083-84 लागि विनियोजन विधेयक सिद्धान्त व प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल गरेसकै के प्रस्ताव पेश हुन कार्यसूचीमा। खोज खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पासा फेरसे विश्वन्तीय सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
7: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैब? पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
8: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बातू। मिलबो नी करत का कहना हो का
7: मिस्तरान बर्जना का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टुफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी मिन कि गुंगुआ बुढो हो ना कबू कहूँ घुम जाए त था पाए।
9: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
10: मिलन आल्मोनियम

0: एंड ग्लास हाउस जमरकी उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 43 26।
1: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
2: जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
1: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
3: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
2: आउने दिन जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
1: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868800008 र 9825677772।
4: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
5: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली। संचालक मदनराज देवकोटा। स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि। सम्पर्क नम्बर 9849585808।
6: विश्राम पाछा फ्रेसे स्वागत बा। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा अनौपचारिक मगर भाषा प्रशिक्षण शुरू हिलवा नेपाल मगर संघ टिकापुर नगर कमिटिकी आयोजनामा शुरू हिलक प्रशिक्षण असार 7 गतेसम्म सञ्चालन हुनेवा। प्रशिक्षण कार्यक्रममा गरिब 50 जनाकै सहभागिता लग नेपाल मगर संघ टिकापुर जानकारी दिलबाट 12-18 मगर रातकै अलग अलग स्थानमा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुनेवा। 12 मगर रातकै टिकापुरकै पशु हाट बजार, 18 मगर रातकै बनगाउँ मगर टोलमा प्रशिक्षण सञ्चालन हुनेवा। 18 मगर रातमा खाम भाषा व 12 मगर रातमा मैढुट भाषाकै प्रशिक्षण हुना मगर समुदायकी अगुवा वीर बहादुर घरती मगर जानकारी दिलबाट। खाम भाषाकै रम्बा पुनः मगरो मैढट भाषाकै चक्र असलामी मगर प्रशिक्षण दिन हुलबाट मगर समुदायकी खाम तथा मैढट भाषा लोप हुन लागल पाछ संरक्षण केला कसिन प्रशिक्षणकै आयोजना कलक आयोजना बटुलबाट। प्रशिक्षण कार्यक्रम टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 आर्थिक सहयोगमा शुरू हुलबा। आज प्रशिक्षणकै उद्घाटन गति टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 वडा सदस्य गणेश बहादुर खर्ती मगर समुदायकै भाषा लोफिटी गैलक वकर संरक्षण केलाक वडा कार्यालय सहयोग कलक बटिलोबाट। मगर संघकै नगर अध्यक्ष खेमान सिंह पुन मगरकै अध्यक्षता महिला कार्यक्रममा स्वागत दिलु खर्ती मगर कर्ला सेफे सञ्चालन गोम खर्ती मगर कर्ला रहे। प्रतिनिधि सभाकी आज बैठकमा सरकारकी आगामी आर्थिक वर्षकी नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसद हुक्र कृषिकी व्यवसायीकरण पर्यटन प्रबन्धन रोजगारी हो समृद्धिकी विषयमा समावेश गर्न आग्रह कलबाट नीति तथा कार्यक्रममा 35 जना सदस्य संशोधन प्रस्ताव कला रहे। बैठकमा सांसद सुहाङ नेम्हाङ नीति तथा कार्यक्रममा उत्साह व भरोसा जगेन प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन रति बरेटी संविधान सम्बोधन दक्षिण राष्ट्रिय भावमा जोडपना बुटिलोबाट। सांसद श्री थेबे सुशासनकै विषय नीति तथा कार्यक्रममा धरना सकारात्मक हो कोलसेफे पर्यटन प्रबन्धनकै प्रभावकारी कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह कलबाट। सांसद गणेश सिंह थगुना नीति तथा कार्यक्रम संशोधनकै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कालापानी डिपुलेको लिपियाधुराकै भूमिकाहा वास्तविक अर्थमा नेपालकै अधीनमा लन्ना भारसंघ कूटनीतिक पहलकना विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नहुना दुःख विलक टिप्पणी कलबाट। सांसद डाक्टर अर्जुन कुमार कार्की आर्थिक कूटनीतिक महत्व देखे वैदेशिक सहयोग सहकार्य बढ़ाएके मुलुक विकासशील राष्ट्रके रूपमा स्तर उन्नति करना कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रहबाट सांसद युवराज दुलाल वन क्षेत्र राष्ट्रिय उत्पादकत्व विधिमा उपयोग गर्न प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रम नयलक बुटिलबाट यही समाचारसँग खोज खबर वराली दिनासे पहिले खबरके मुख्य शीर्षक फेर्से एकचो टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर दुईद्वारा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका साइकल वर्धन आवश्यक सामग्री वितरण एचआईभी संक्रमित भुक्ति रहल लालथानाबारे छलफल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,812 जना एचआईभी संक्रमित नियमित औषधि सेवन गर्थे एससी पूरक परीक्षा असार 1 गते से सञ्चालन हुना ओ प्रतिनिधि सभा बैठक 35 जना संसदद्वारा संशोधनको प्रस्ताव लिटा बक्ला खोज खबर तरह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद लिटी बक्ला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदाई टू एक पास 6 बजे की खोज खबर सुन सीखी सामुदायिक रेडियो टीका प्रथम सुनती रवि राम राम
7: आरएमई स्कूल टीकापुर में विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
6: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित आरएमई स्कूल टीकापुरमा नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ
7: आरएमई स्कूल टीकापुर कैलाली सम्पर्क नम्बर 091561250 र 091560712
8: दाई नाचबा कहाँ जाइ लग्नु त
9: यो सब लाग्दा चर्पी जाइ टुका
8: ए रुको नाटक पछिन हो कला छे मै टर्च लाइट लट्ठी दिए तु लेख दाओ
9: काजे चुनु लट्ठी ओ टर्च लाइट
8: का कर रही दाई राटिक डाला बाहे निकल पर्ला छे वाटवाइले जाइ पर्ला छे जहिया फे टर्च लाइट बारख को लम्मा लट्ठी देख के न जाइ पर्था का कर कि बर्खा छक बा साफ रह छक थ टर्च को अजराले साफन ड्या खसेक दै था को लट्ठी ठ्याक ठ्याक आवाज सुनख साफ भक्त का
9: हो कत्रा मजा सल्लाह डेली मार छोटकी छाई
8: दाई हमन्ना स्कूलिक मैडम सर नुक साथ नुक सेना ठाउसी न्यांग पर्लसी वो काम कर पर्लसी जहिया फेठ फसिया विपथा गई सीखे लबाट का आम छटवा दिभा झपास अथवा झ्याङ्गा चलक ठाउँमा न्याङ पर्लसी लम्मा लट्ठी देख ठ्याक ठ्याक बजेटी न्याङ पथा गई कलबाट
10: साफ बर्खा छाकक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परैछ यी मौसममा आफन बस्यारामा पानी पैसा पिलाकोर्से सुक्खा ठाउँका खोजीमा उक्रा बाहिर निस्कठ
11: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्ना क्रममा फेर साँप मानव बस्ती लग्घ आइसक्छ
9: विश्वास लग्ना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैठ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहेसेक दिठा
12: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
13: खुले यस सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुर कैलालीमा सामान्य चिकित्सा SA कार्यक्रम अध्ययनको लागि भर्ना खुल्यो
14: फारम भर्ने मिति 2083 वैशाख 29 गतेदेखि जेठ 13 गते सम्म
13: अनलाइन फारम सम्बन्धमा पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरूले यस सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुर कैलालीमा आएर सहयोग लिई फारम भर्न सक्नुहुनेछ अथवा www.ctevtexam.org.np मा उपलब्ध गराइएको ITMS अनलाइनमा भरी सबमिट गर्नुपर्नेछ
14: सामुदायिक क्याम्पस भएकोले एचए कार्यक्रममा ₹3,23,200 शुल्कमा मात्र अध्ययन गराइन्छ
13: आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन भएको व्यवस्थित प्रयोगशाला र विषय विशेषज्ञद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिन्छ
14: आवेदन फारम शुल्क ₹1,000 लाग्नेछ
13: फारम भर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू
14: एसईई एसएलसी वा प्राविधिक एसएलसी को शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि नागरिकता वा जन्म दर्ता लक्षित वर्गमा फारम भर्नु परेमा आफ्नो वर्ग खुल्ने प्रमाण पत्र र स्पष्ट मुखाकृत देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
13: नोट सामान्य चिकित्सा एचए अध्ययन गर्नको लागि न्यूनतम 2 जीपीए हुनु पर्नेछ सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुर कैलाली सम्पर्क नम्बर 091560203 9858487079 9848677786 र 9845449997
14: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग लगायत देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उत्साह र उमङ्ग सहित सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण कस्मेटिक भान्सामा प्रयोग हुने सामान यसै गरी जुत्ता चप्पल खेलौना प्लास्टिकका सामान सरसफाईका सामान र फास्ट फूड का सामान अब एकै ठाउँमा पाइन्छ
15: सेभेन रेनबो मार्ट टीएमसी रोड जमरापुल नजिकै टिकापुर कैलाली संचालक भेन्टीराम चौधरी मोबाइल नम्बर 9845002008
16: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछसे सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल
17: अरे का करुरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो नि करत का कैन हो का
16: मिस्तरान बर्जन उकना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाका टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो ना कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए
18: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
0: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
15: नयाँ वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सक्कु ग्राहक व्यापारी शुभ चिन्तक दादू भैया दीदी बहिनी हुकन म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती
6: आज मुहिन टिक्री वो घोंगी बरा खैन लगता कहाँ दिन हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
15: ए महीनो बरा खैन मन लागल बा चलो न जाई संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलत चलो जाई मैखन संगे जिम
6: चलो टा चलो
15: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बो सेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनुआ रोड जनकल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9806410186 थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली
19: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज

0: नयाँ वर्ष 2083 सालके पावन अवसरमे सक्कु ग्राहक व्यापारी शुभचिन्तक दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तर प्रगति के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: हमारे यहाँ थारू पहिरन के लहंगा चोलिया धोती सिलाई कना के संगे रेडीमेड भी उपलब्ध करा जाए और कुर्ता सुरुवाल फैशन डिजाइन के कपड़ा सिलेना और सिलाई कटाई के तालीम फे करा जाए। एक तो सेवा करना मौका जरूर देवी।
0: अभी फैशन बुटीक सामुदायिक पुस्तकालय भवन टीकापुर कैलाली संचालक प्रतीक्षा चौधरी फोन नंबर 9968770825।
2: नववर्ष 2083 सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने मूल नाराका साथ विद्यालय भर्ना अभियान 2083 शुरू भइसकेको छ। सबै अभिभावकहरूले आफूलाई पाएक पर्ने नजिकको विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ। अध्यक्ष टोप बहादुर केसी नारायणपुर सामुदायिक सिकाई केन्द्र तथा अध्यक्ष मणिराम ढुंगाना भानु सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र सत्ती।

0: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय कंचनपुर को विद्यार्थी भर्ना संबंधी सूचना।
5: सिटी भिटी बाट सम्बन्धन प्राप्त महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर में न्यूनतम शुल्क में प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अध्यापन गराउन शैक्षिक सत्र 2083-84 का लागि 3 वर्षे प्रमाण पत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी CMLT 30 जना सामान्य चिकित्सा HA 40 जना नेत्र विज्ञान OA 40 जना डिप्लोमा इन फार्मेसी DPH 40 जना विद्यार्थीहरूको अनलाइन फर्म खुलेको सहर्ष जानकारी गरिन्छ।
4: भर्ना कार्यक्रम
5: अनलाइन आवेदन फारम वितरण शुरू वैशाख 29 गते देखि।
4: अनलाइन आवेदन फारम को अन्तिम मिति जेठ 13 गते बुधबार।
5: आवेदन फारम शुल्क रु 1000 मात्र। अनलाइन आवेदन फारम www.cetvt.exam.org.np को ITMS मा भरी अनलाइन सबमिट गर्नु पर्नेछ। अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि SCA का कागज पत्र ल्याई शिक्षालयमा भर्न सकिनेछ।
4: आवश्यक कागज पत्रहरू
5: SEE SLC उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता सकलबाट स्क्यान गरिएको प्रति
4: जन्म दर्ता नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र स्क्यान प्रतिलिपि
5: लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरूको स्क्यान प्रतिलिपि
4: स्पष्ट मुखाकृति देखिने हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
5: कोटामा भर्नु पर्ने भएमा सो स्थानीय तहको सिफारिस।
4: सम्पर्क स्थान महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर।
5: सम्पर्क नम्बर 0999900044 9858700044 9847202740 9762423921 र 9659663520।

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सक्कू ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनी हुकन में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आज मुहिम टिकरी वो घोंगी बड़ा खेना लगता कहाँ दिना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खेना मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलट चलो जाए मई फैन संगे जिम
1: चलो तो चलो
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बोसेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनुआ रोड जनक कल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9804010186 थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली। त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स आफ्नो ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक आफन्त इष्टमित्र साथी भाइहरूमा नयाँ वर्ष 2083 को मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। साथै हाम्रो यहाँ ई रिक्सा अटोका पाटपुर्जा पाइनुका साथै ई रिक्सा बिक्री पनि गरिन्छ। त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स सशस्त्र प्रहरी गढ नजिकै टीकापुर कैलाली
2: संचालक चन्द्र प्रकाश रेग्मी र रविन्द्र हमाल सम्पर्क नम्बर 9854447244 र 9854422233।
3: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सिकल
4: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
3: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
5: यूपीवीसी ब्रांड के मुआ का द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में आल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
0: मिलन आल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरगी उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
2: भर्ना खुल्यो
6: यस सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टीकापुर कैलालीमा सामान्य चिकित्सा एसए कार्यक्रम अध्ययनको लागि भर्ना खुल्यो।
2: फारम भर्ने मिति 2083 वैशाख 29 गते देखि जेठ 13 गते सम्म।
6: अनलाइन फारम सम्बन्धमा पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरूले यस सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टीकापुरे कैलालीमा आएर सहयोग लिई फारम भर्न सक्नुहुनेछ अथवा www.ctevtexam.org.np मा उपलब्ध गराइएको आईटीएमएस अनलाइनमा भरी सबमिट गर्नुपर्नेछ।
2: सामुदायिक क्याम्पस भएकोले यसै कार्यक्रममा ₹3,23,200 शुल्कमा मात्र अध्ययन गराइन्छ।
6: आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन भएको व्यवस्थित प्रयोगशाला र विषय विशेषज्ञद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिन्छ।
2: आवेदन फारम शुल्क ₹1,000 लाग्नेछ।
6: फारम भर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू
2: एसईई एसएलसी वा प्राविधिक एसएलसी को शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि नागरिकता वा जन्म दर्ता लक्षित वर्गमा फारम भर्नु परेमा आफ्नो वर्ग खुल्ने प्रमाण पत्र र स्पष्ट मुखाकृत देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो।
6: नोट सामान्य चिकित्सा एचए अध्ययन गर्नको लागि न्यूनतम 2 GPA हुनुपर्नेछ। सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टीकापुर कैलाली सम्पर्क नम्बर 0915602030 9858470709 9848677786 र 9845449997।
7: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईती। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उकरा संपर्क कई के उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पॉलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पॉलिक्लिनिक प्राली, गुम्बा रोड, गोलचोक लगह, टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
0: जनप्रकाश आधारभूत विद्यालय में भर्ना खुल्यो।
1: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित जनप्रकाश आधारभूत विद्यालय टीकापुर चार बगमारामा शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि नर्सरीदेखि कक्षा 8 सम्म विद्यार्थी भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
0: जनप्रकाश आधारभूत विद्यालयका विशेषताहरू:
1: नर्सरी केजी र 1 सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराइने,
0: अनुभवी शिक्षक द्वारा पठन पाठन गराइने,
1: नयाँ प्रविधि र सरल तरिकाले स्मार्ट बोर्डमा अध्ययन गराइने,
0: सुरक्षित भवन, पर्खाल, खाने पानी र पुस्तकालयको व्यवस्था भएको,
1: विद्यार्थीहरूको हेरचाहको राम्रो व्यवस्था भएको, कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था भएको, तातो र चिसो खाने पानीको सुविधा र सफा शौचालयको व्यवस्था समेत भएको
0: र टाई बेल्ट र आईडीको पनि व्यवस्था भएको।
1: जनप्रकाश आधारभूत विद्यालय टीकापुर चार बागमारा,
0: प्रधान अध्यापक रघुनाथ उपाध्याय। सम्पर्क नम्बर 98584-33-733।

टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटीलो ठाव से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटाका था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373